आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और इस सुहानी सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के सफर में। दोस्तों आज की ये नई सुबह अपने साथ लेकर आई है नई उमंग, नए विचार और ढेर सारी सकारात्मकता। आज के नमस्कार लखनऊ के इस खूबसूरत सफर में हम हैं आपके साथ, आज के इस सफर को और भी खास और शानदार बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सफर की। सबसे पहले

0: बताऊं, विश्व आईवीएफ दिवस केवल एक तारीख नहीं, ये उन सभी संघर्षशील दंपतियों को सलाम करने का दिन है जो हर महीने उम्मीद लेकर क्लिनिक के चौखट पर खड़े होते हैं। ये उन डॉक्टरों को सम्मान देने का दिन है जो विज्ञान और संवेदना के बीच संतुलन बनाकर एक नई जिंदगी की राह बनाते हैं, और ये उन परिवारों को प्रेरित करने का दिन है जो कभी असंभव माने जाने वाले सपने को संभव होते देखते हैं। तो आइए आज के दिन हम ये संकल्प लें कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसी दंपति है जो इस संघर्ष से गुजर रही है तो हम उन्हें सहानुभूति दें, उनका मजाक न बनाएं, और अगर वे आईवीएफ जैसे किसी विकल्प को चुनते हैं तो उन्हें पूरे सम्मान और सहयोग के साथ स्वीकार करें। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: वर्ल्ड आईवीएफ डे पर आज आप ये चर्चा सुन रहे थे नीना सोनकर से, निसंतान दंपतियों के लिए चिकित्सा का सफल वरदान। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, लीजिए सुनिए आज दिन